क्या टेक्नोलॉजी वाकई आपकी जिंदगी को सहल बनाती है या एक गैर मरई कुवत बनकर आपको इसका एहसास दिलाए बगैर आपको रोक देती है? आप दिन में कितनी बार सिर्फ एक मिनट कहकर अपने मोबाइल का सहारा लेते हैं? क्या टेक्नोलॉजी आपके जेर कंट्रोल है या टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करती है? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सब के लिए बायस तशवीश है। सरआजम, तकरीबन हर किसी की जेब में डिजिटल कायनात मौजूद है ना, जो कि हमारी जिंदगी की डगर को नुमाया तौर पर बदल रही है। जागते अपने फोन को चेक करना, वक्फे के दौरान सोशल मीडिया ब्राउज करना, ये बाज औकात महज तफरी के बजाय गर्दाब बन जाता है। यूरोपियन पर मही 2023 के एक मुताले से इस बात का तयन हुआ है कि जिन लोगों ने डिजिटल मिनिमलिज्म का तरीका अपनाया, उनके स्क्रीन टाइम में औसतन 20% कमी आई। इसके नतीजे में दिमागी सेहत, नौकरी, निजी जिंदगी के तनावे में नुमाया बेहतरी आई। तो डिजिटल मिनिमलिज्म सही मानों में क्या मफहूम रखता है और ये क्या हकीकत में मुमकिन है? टीआरटी खबर ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट

अक्यूज चायलाक से इन सवालों पर तबादला ख्याल किया। चायलाक ने बच्चों बड़े दोनों के लिए एक अहम सतह का इंतबाह से मुकम्मल तौर पर तर्क किए बगैर टेक्नोलॉजी के मुतवाजन इस्तेमाल के तरीकाकार को जेर लपताया है। आइए अब इस दिलचस्प गुफ्तगु पर काम करते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म यानी मुख्तसर तरीन इस्तेमाल क्या चीज है, ये क्यों कर अहम है? डिजिटल मिनिमलिज्म हमारी जिंदगी के मरकज में टेक्नोलॉजी के बजाय हमारी अपनी इकदार को रखने पर जोर देता है। चायलाक ने इस नुक्ता नजर की वजाहत कुछ यूं की है। डिजिटल मिनिमलिज्म एक ऐसा फलसफा है जो अफराद को डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते वक्त अपने शुरू को बरकरार रखने और सिलेक्टिव यानी तरजीहात पसंद बनने को तरकीब देता है। तजवीज करता है कि अफराद डिजिटल टूल सरगर्मियों पर जिनमें मशगूल होते हैं अपनी तरजीहात पर अपनी ख्वाहिश के दौरान पर तवज्जो मरकूज करते हैं जिनसे अच्छा महसूस करें ये मालूमात के हसूल में मामूल हो। मुख्तसर स्क्रीनों को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खारिज करने के बजाय किसी चीज पर क्यों कर कितनी मुद्दत के लिए तवज्जो देना अहमियत का हामिल है। बेतहाशा नोटिफिकेशन और फोमो यानी हालात की आगाही से महरूम रहना। हमारे फोन्स का मुसलसल बजना, कोई भी नोटिफिकेशन आने पर इसे फौरन चेक करने की दिली ख्वाहिश, यहाँ तक कि अगर हम नोटिफिकेशन ऑफ भी कर देते हैं तो हमें अक्सर ये एहसास होता है क्या कि मैं कुछ खो रहा हूँ। चायलाक के मुताबिक सूरतेहाल में गैर इरादी तौर पर हमारी तवज्जो स्क्रीन की तरफ मरकूज कर देती है। मुसलसल ऑन नहीं रहने का दबाव, पेशरफ की आगाही से दूर रहने का खौफ डिजिटल आले की बार बार चेकिंग का बायस बनता है। कुछ मुतालिया से इस बात का तयन हुआ है कि जिन लोगों में हालात हाजरा से आगाही हासिल न करने का खौफ बहुत ज्यादा होता है वो नोटिफिकेशंस बंद हों तो भी अपने फोन को इतनी ही बार या इससे भी ज्यादा बार चेक करने की तरफ मायल हो सकते हैं। इन अफराद के जो ऑनलाइन होने के दबाव फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का बहुत ज्यादा खौफ महसूस करते हैं के लिए खुद ज़ाब्ता खुद पर काबू पाने की सलाहियत तैयार करना, ज़ाती वसाइल तक रसाई करना या पेशेवराना मदद हासिल करना रोजमर्रा की जिंदगी में इनके काम काज को अक्सर मुतासर करता है तो मुअसर साबित हो सकता है। परेशानी की सतह और स्क्रीन का वक्त लंबी स्क्रीन वाली मैराथन जिस्मानी और जहनी दोनों तरह से थका देती है। चायलाक का कहना है ताल्लुक वासे तौर पर देखा जाता है, खास तौर पर बच्चों नौ उम्रों में वालदेन को स्क्रीन के वक्त के करीब से निगरानी करनी चाहिए। मुतालिन ऑनलाइन गेमिंग टीवी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल बेचैनी के दरमियान ताल्लुक जाहिर किया है। मजीद फराम बच्चों में स्क्रीन टाइम डिप्रेशन का जायजा लेने वाले तकरीबन तमाम मुतालियात में अहम इर्तबात पाया गया है जो बच्चों में स्क्रीन टाइम डिप्रेशन के दरमियान ताल्लुक में आला सतह यकीनी का मुजाहरा करते हैं। इन वजूहात की बिना पर वालदेन को तजवीज किया जाता है कि अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम और डिप्रेशन की मुमकिन अलामात की निगरानी करें। डिजिटल डिओटेक्स क्या मुख्तसर वक्फे देर पा हल है? हाल ही बरसों में डिजिटल डिओटेक्स एक मकबूल रुझान बन गया है। इसमें मेडिकल तर्ज के तरीकाकार शामिल है जैसे फोन को कई दिनों तक इस्तेमाल न करना। चायलाक के मुताबिक अर्चे एक आर्जी वक्फा है लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के दीगर शोबे में एडजस्टमेंट नहीं करते तो ये मुमकिन तौर पर देर पा हल नहीं होगा। इन डिटॉक्स तराइक पर अमल दरामद करने से अफराद अपनी डिजिटल आदात पर कंट्रोल हासिल करने, मुसलसल ऑनलाइन सरगर्मियों से मुंसलिक जहनी तनाव को कम करने, टेक्नोलॉजी के साथ सेहतमंदाना ताल्लुक इस्तवार करने का मकसद बनाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के दौरान सोशल मीडिया से कुछ मुद्दत दूर रहना अफराद को दरपेश हो सकने वाले अदम सलाहियत और इत्मीनान के साथ में गिरावट ला सकने की सोच पाई जाती है। इसके बरक्स इस बात का तयन हुआ है कि डिजिटल डिटॉक्स का दिमागी सेहत जिंदगी की तस्कीन और तनाव पर कोई काबिल जिक्र असर नहीं होता। स्क्रीन का वक्त कम करने पर अमल दरामद करने से कब के इकदाम तो फिर हमें कहां से शुरू करना चाहिए? जिम्मेदारी तौर पर रफ्तार रफ्तार का उसूल तजवीज किया जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म का पहला कदम यह समझना है कि हमें वाकई किन एप्लीकेशंस की जरूरत है। गैर जरूरी एप्लीकेशंस को हज़्फ़ करना, नोटिफिकेशंस को ऑफ करना और दिन के कुछ घंटे ऑफलाइन गुजारना अक्सर बेशतर तजवीज करता छोटे लेकिन मौसर इकदाम में से है। इनम आक्यूस चायलाक अपनी तजावीज के अलावा खुद साबते खुद पर काबू पाने की शिकायतों की अहमियत की तरफ तवज्जो भी मबसूल कराती हैं। सेल्फ रेगुलेशन यानी पुरसकून होने की शिकायत को फरोग देना अहमियत का हामिल है जो कि खुद पर काबू पाने की शिकायत को फरोग देने में भी मामिल बन सकता है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी सरगर्मी का इंतखाब कर सकते हैं जो कि शौराना हो बल्कि दिलचस्पी के मुताबिक हो, जिस पर हम हमारी

तो जो कायम रहे। हम ये भी फैसला कर सकते हैं हम किस सरगर्मी में मशगूल नहीं होंगे और इसके लिए वक्त मुख्तस कर सकते हैं। इस तरह एक शख्स अपने आप को बाइख्तियार मजबूत बनाकर डिजिटल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करने के तरीकाकार को किसी चीज से दूर भागने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय एक फालसी फहम तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर सकता है। कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं क्या कंट्रोल मेरे हाथ में है टेक्नोलॉजी के पास, तो आप चंद अमली इकदाम कर सकते हैं। अपने फोन पर मौजूद एप्स का जायजा लें, एप्स को हजफ करें जिन्हें आप अक्सर इस्तेमाल नहीं करते, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचता। नोटिफिकेशंस की हदबंदी, सिर्फ अहम एप्स से नोटिफिकेशंस मौसूल करें, बाकी को साइलेंट करके अपनी तवज्जो बरकरार रख सकते हैं। योमिया हफ्तावार कोटा मुकर्रर करें, मिसाल के तौर पर योमिया एक घंटा सोशल मीडिया या हफ्ते में एक दिन ऑफलाइन रहने जैसे अहदाफ मुकर्रर करें। हकीकी जिंदगी के तामलात को तरजीह दें, साथ साथ वक्त गुजारना फितरी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करता है। मुतबादल सरगर्मियां तलाश करें, खेल मौसीकी दस्तकारी या दीगर मशागल फोन को हाथ में पकड़ने के औकात में गिरावट लाएगा। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सब कुछ हो। कंट्रोल वापस लेना दरअसल हम पर है। बेदारी के मुख्तसर लम्हात बड़ी तब्दीलियों का आगाज साबित हो सकते हैं। शायद आज ही इस दिन के आगाज का दिन हो। आपका क्या ख्याल है?